0: चल के रहा
1: क्या बोले
0: चल के चल गया चल के
2: beda rasa satu rasa sukun spesial ba.